0: Plus. Metro Plus, your connect. Your connect.
1: Mosquitoes can transmit many different infections. Even if you may not have symptoms when infected, if the virus is present in the blood, a second bite can spread it to others. Therefore, after returning from affected areas, apply insect repellent containing DEET for 14 consecutive days. Remember to see a doctor if you feel unwell. To prevent mosquito bites, wear light-colored, loose, and long-sleeve clothing and apply insect repellent. Stop disease from spreading. Guard against mosquito bites. It's my
0: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
2: Life is for the living. You have to make the most of it.
0: On Family.
2: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
0: Life with drugs. No life at all.
3: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest, and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
4: Namaste, Sasrekaal, Salaam, Kidda Hoon Ji Sare, Badiya, Aapka Ji, Bahut Badiya. Aaj Hai Ji, 19 June 2026. Aaj Shuru Karte Hai Ji, Hamara Show. Aaj Hamare Paas, I think, Takriban... एक दो तीन चार चार अनाउंसमेंट है. तो पहला अनाउंसमेंट है जी, अकेडमी फॉर पेरेंट्स ऑफ नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स, लर्निंग सपोर्ट फॉर नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स. एजुकेशन ब्यूरो ने कैरिटास हांगकांग को बोला है कि वो अकेडमी फॉर पेरेंट्स ऑफ नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स के अंदर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें. ये एक्टिविटीज हांगकांग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सैटरडे आफ्टरनून को होती है. अगला इवेंट 27 जून 2026 सैटरडे को कुंग थोंग में हांगकांग थाइओस्ट एसोसिएशन वोन चुन स्कूल में होगा. टाइम है दोपहर 2 बजे से 4:15 तक. इस इवेंट का टॉपिक है लर्निंग सपोर्ट फॉर नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स. हम सभी नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इन्वाइट

निकलते हैं, जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई, डेवलपमेंट, इमोशंस और स्ट्रेस हैंडलिंग के बारे में समझना चाहिए ताकि वो उनकी मदद कर सकें। इस इवेंट में एजुकेशन ब्यूरो के रिप्रेजेंटेटिव शेयरिंग करेंगे नॉन चाइनीज स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल एजुकेशन सर्विसेज के बारे में, साथ ही पेरेंट्स के लिए एडोलेसेंस की मेंटल हेल्थ सपोर्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट की टिप्स भी मिलेंगी। पेरेंट्स और बच्चे कुंगथांग मेथोडिस्ट सोशल सर्विस नाउधाओकॉक यूथ इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर की विजिट करके कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में भी जानेंगे। और सबसे अच्छी बात, सारी एक्टिविटीज कंप्लीटली फ्री हैं। ज़्यादा जानकारी या इनरोलमेंट के लिए कॉल कीजिए 2552-4211 या व्हाट्सएप कीजिए 9862-3150। ज़रूर आइए और ज्वाइन कीजिए। ओके आते हैं जी हमारे पहले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज अनोनिमस एंड गाने का नाम है जी वालियां बाय हर्ष नुसी एंड सर्वजोत। एंजॉय द सॉन्ग।

वेलकम बैक। आते हैं जी हमारे दूसरे अनाउंसमेंट पर। दिस इज रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग। हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है। रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और आपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग ज़रूरी है, करवाइए, ज़रूर करवाइए। बहुत सी महिलाओं जिन्हें HPV वायरस है जो सर्विकल कैंसर का कारण बनता है, या कैंसर शुरुआती स्टेज में है, उनको कोई लक्षण भी नहीं दिखते। याद रखो, चाहे आपको कोई लक्षण ना हो, HPV वैक्सीन लगा लो, लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो, तब भी रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग करवाने के लिए आप मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स, फैमिली डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट या NGOs के पास जा सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग ले के लिए कॉल कीजिए 3166-6631। जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में HPV सेल्फ सैम्पलिंग की सुविधा भी शुरू हो गई है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। हांगकांग आइलैंड का नंबर है 2855-333, कालून का नंबर है 2855-1222, न्यू टेरिटरीज का कांटेक्ट नंबर है 2851-1722। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पर जाइए www.cervicalscreening.gov.hk। अपना ख्याल रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय रूबी एंड दिस इज फॉर साकिब। एंड उन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो है तू कैंदी सी बाय नोशी एंड जैक नाइट। सो एंजॉय द सॉन्ग।

All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज रिसीव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग. आज ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. हांगकांग में आंतर का कैंसर बहुत कॉमन कैंसर में से एक है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको जल्दी पकड़ा जा सकता है और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाओ. शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. 50 से 75 साल के हांगकांग रेसिडेंट्स जो अभी कोई सिम्टम्स नहीं फील कर रहे, उनके लिए ये स्क्रीनिंग फ्री हो सकती है. अगर रिजल्ट नॉर्मल आए तो हर 2 साल बाद फिर स्क्रीनिंग ज़रूर करवाओ. ज़्यादा जानकारी के लिए www.colonscreen.gov.hk पर भी जा सकते हो. हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ एक्सरसाइज करो, दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखो, स्मोकिंग और शराब छोड़ दो. बस यही, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, आज ही स्क्रीनिंग करवाओ. ऑलराइट, आते हैं अगले गाने पर. ये मनी सिंह ने गाना रिक्वेस्ट किया है, 52 बार्स बाय करण औजला. एंजॉय द सॉन्ग.

Alright guys, welcome back. आते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. दिस इज प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा COVID-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस. इस सीजन में अलर्ट रहो, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, COVID-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं. अपनी सफाई और घर परिवार के की हाइजीन का ख्याल रखो. खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो. हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धो दो. अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो. गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. हर साल फ्लू का वैक्सीन लगाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर. एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है. COVID-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए. जो है रेजिडेंशियल केयर होम्स में रहने वाले, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के जो क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी कमजोर लोग जो 6 महीने से ऊपर हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं. ज्यादा जानकारी के लिए सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन की वेबसाइट देखें www.chp.gov.hk. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें. ऑलराइटी, बढ़ते हैं हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय सनी सिंह. द नेम ऑफ द सॉन्ग इज ब्लैक बुल बाय अमृत मान. एंजॉय द सॉन्ग.

All right, guys, welcome back. अब तो सारे गाने, I mean, जो अनाउंसमेंट से

0: अनाउंसमेंट्स थे वो तो सारे हो गए खत्म, तो सीधा गानों में चलते हैं। चार गाने तो ऑलरेडी लग चुके हैं और ये पांचवा गाना, वी गॉट लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑन फेसबुक, सो जितने गाने प्ले कर सकेंगे तो उतने करेंगे, ठीक है? जिसके नए गाने प्ले किए तो अगली बार ट्राई कर लेंगे। एनीवेज, हाँ, लगाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि एक किसी यूजर ने कहा था कि लाइक यू नो, हमेशा आप एक अनोनिमस का गाना लगाते हो, हमेशा हमारा गाना नहीं लगाते हो। देखो, हमारे पास काफ़ी सारे जो रिक्वेस्ट आते हैं ना, काफ़ी उनमें से कोई लोग हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो वो अनोनिमस एक बंदा या बंदी नहीं है, वो अनोनिमस अनोनिमस ही है। तो काफ़ी सारे हैं ऐसे जो कि अपना नाम ऑन एयर नहीं बताना चाहते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक इसलिए वो हम अनोनिमस ही रखते हैं। नाम एक है क्योंकि वो अनोनिमस ही है, तो आपको लगता होगा कि लाइक यू नो, सिर्फ एक ही बंदा है जो बार बार वही गाने रिक्वेस्ट कर रहा है। नो, वी हैव फ्यू पीपल रिक्वेस्टिंग सॉन्ग्स अंडर द नेम ऑफ अनोनिमस, ठीक है? तो ये बात एक है। दूसरा, वी ट्राई टू प्ले एज मेनी सॉन्ग्स एज पॉसिबल विद इन 1 आवर दैट वी हैव। तो या अगर मिस होता है तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम जो गाने पिक करते हैं, जो मेरी टीम गाने पिक करती है, वो बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम है, ठीक है? उनको वो रैंडमली पिक करते हैं 10-15 गाने हर हफ्ते, तो वो वैसे हम लगा देते हैं, ठीक है? चलो, आई वॉन्ट कीप दिस शॉर्ट, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट वॉन्ट टू एड्रेस द इशू। बढ़ते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। माजिद जट ने ये गाना रिक्वेस्ट किया है, असी राजपूता, एंड डोंट थिंक ही हैज डेडिकेटेड द सॉन्ग टू एनीवन। तो एनीवेज, एंजॉय द सॉन्ग, दिस इज असी राजपूता बाय रियो सिंह राजपूत। एंजॉय द सॉन्ग।
1: राजपूताना सुपरस्टार, नाम तो सुना ही होगा।

आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय FIHK मैसेजेस. हेलो, हाउ आर यू रोमी भाई? आई होप यू डूइंग गुड. दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू रोमी भाई, पप्पू वाइज एंड बट साहब एंड फारी वाइज, मिर्जा जुबेर खान, रांझा अंसर एंड गुरु गुरसेवक सिंह फ्रॉम FIHK. थैंक यू. गाने का नाम है जी लेवल बाय सरदार खैरा. थैंक यू ब्रो. ऑलराइट, एंजॉय द सॉन्ग. दिस इज लेवल बाय सरदार खैरा.

0: और आई गैस वेलकम बैक, आते हैं जी हमारे अगले गाने पर. बट बिफोर वी डू दैट, वी हैव अ कमेंट ऑन फेसबुक बाय यासिर खान. हेलो, प्लीज सेंड माय फ्रेंड अ मैसेज, हमजा आई मिस यू फ्रॉम यासिर L3C. ओके, दिस इज डन. और बढ़ते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय अमरे संधू. गाने का नाम है जेड़े छड़ गए बाय वीर संधू, डेडिकेटेड टू अमरीका बाई, पंकज, वीर पठान, अफनान, पंज ग्राई एंड हैरी शूटर. सो एंजॉय द सॉन्ग.
1: अगर तेरे को लगे कि तेरे अंदर वफादारी के कीटाणु मर गए हैं तो मेरे कुत्ते का जूठा खा लेना, कुत्ते का जूठा खा लेना.

ऑल राइट गाइस, आते हैं जी हमारे अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय यसीन मोहम्मद एंड द मैसेज इज आई वांट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग फॉर कमिंग फ्राइडे. ओके, जैकपॉट बाय आर्टिस्ट चीमा वाई, डेडिकेटेड टू चीमा अरसलान, पेंडा अतीक एंड माय ब्रदर चीमा जे फ्रॉम स्टैनली एंड पिक्यूक. ओके जी, एंजॉय द सॉन्ग. दिस इज जैकपॉट बाय चीमा वाई.